ताबिरी बासी आकाशवाणी फलगे एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउसिक संदक्चरी लेबाकनिंग बशेय निखक मथंग मथंग उइना आहान बदा ताबिरसी श्रुति संगम गि सैसक पसिंग नसकपा कैसाम जामिनी कांतन सेरिंगबा लेबाकनिंग बशेयमा

0: आकाशवाणी इंफाल हाउसिक आयोग के पुंग तरित मखाई तारे मणिपुरी तपाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इंफाल माइबम दिजमनी न पाउ पाजरी आहान बता मरोई बपाउ कांगपोखरी जिला के साइखोल पुलिस स्टेशन कोनबा मकोक सिंह सिंगसांग परेंगी उमंगदेगी सिक्योरिटी फोर्स ने यामलबा खुजखुलाई सिंह फंखराय मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हाइरी मणिपुर की सानरोय सिंह ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स उठीबा हाइथोई सिंथोई बसिंग दु येंगलगा लेबा गसे की साना खोनबगी लमदा रायजसिना असोब थौदांग लौरी हाइबदो अमुंग हन उत्पंगमले अमसुंग सुप्रीम कोर्ट की जज मसिंग हेनगर हनबा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल लेसिंग अली कुलतरुक लोकसभा ने पास तौखराय सिक्योरिटी फोर्स न कांगपोखरी जिला की साइकुल पुलिस स्टेशन कोनबा मकोक सिंह सिंगसांग परेंगी उमंगदेगी यामलब खुजुखुलाई सिंह फंखराय पुलिस की पाउन है सिक्योरिटी फोर्स न थी भूम की थबक सथबदा खुलाई सिंह अदु फंखिबनी मदुगी मनुंगदा एम 16 नोंमै अमा मार्क 3 राइफल अमा स्नाइपर राइफल अमा .22 बॉल एक्शन नोंमै अमा सिंगल बेरल नोंमै 15 पिस्तोल तरेट तोंगान तोंगान बा नोंमै की काप यारिब मरु हुंबुद्रा तरुक एमटी केस साम हुंबुद्रा मापन राइफल की मैगजीन अमा पंपी मरी हैंड ग्रेनेड अहुम डिटोनेटर कुन बुफेंग रेडियो सेट मरी अमती चार्जर अमा फंखी अमरोमदा कांगपोखरी जिला की मनुंग सनबा मोटबुंग की सार हजारे दगी मियोय अमा कानी किलोग्राम 49 मखाइरोम ग कोनना मणिपुर पुलिस न फारे एनडीपीएस ए के मखा द एफआईआर अमा लखतुना मकाता ने थिसन बिगी थाबक सथरी हाइरी आतो बथो दो गमदना थोबाल जिला की मनुंग सनबा मोइजिंग लेंगोय जिल दगी मियोय अमा नोमय यमदि नेसा के पोलम याउना लुपा लाख अमा मखाइ हेन बिगी सनफम ग कोनना फारे पुलिस की पाउन है मियोय अदुदगी ब्राउन सुगर निसिंगनब ग्राम सामंगा कुंथ्रा हेनबगी पोलम अमदी 12 बोर पम एक्शन गन अम फगटखी मसिगी सुमथकता एमटी शॉट गन सेल निपान कार्ट्रिज बोल्ट अमगलेना सेल ओइना लुपा लाख अम लिसिंग मरिफु माथोय सनी मरिफु मियोय अदुदगी फंखी हाइरी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसानगा सैनिक स्कूल इम्फाल की ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर श्याम कृष्ण टीपीगा मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी तो उनदुना वरी सानखरे उनबदुद राज्यसिद उपराष्ट्रपति लागनबगी सेम सारेबसिंगी मतांगद कुमना खनकी हाइरी मसिगी सुमथकता सैनिक स्कूल इम्फाल की पाइकट पयाबा तोंगान तोंगानबा साखोत थौरांगी मतांगद सुखनखी सरकार की माइकैदगी स्कूल असिद पांगबयाबा मतेंग पांगदुना राज्यसिगी महिरोयसिंगबु लेबागसिगी तुंगी युम्पी ओइहुनाबा होनाबादा स्कूल असिगी असोबु थौदांगलै हाइरी अमरोमदा ऑल मणिपुर मुआइथाई लवर्स एंड प्रेयर्स ऑर्गेनाइजेशन की मिहुट कांगबु अमगा मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान का महा की सेक्रेटरी तो उनखराय ऑर्गेनाइजेशन असिना होरगलिबा आंगांगसिंगदा मसाना असिगी मतांगदा ताकपी तंबीबेगी पाइखलिबा थाबकसिंगबु मुख्यमंत्री ने सिंथाखी सरकार असिना होरगलिबा नहासिंगबु साना खोनबगी लमदा पुंगनिंग संगनबा तोंगान तोंगानबा थौरांगसिंग पाइखतुना लागली मखातानासु थौरांग कया पाइखतुना होरगलिबा नहारोलसिंगना मणिपुर अमदी लैबाक असिगीदमक मिक्सेट पुरकनबा होनगिनी हाइना मुख्यमंत्री ने फोंदोगली ग्लासगोदा पांगथोखिबा कॉमनवेल्थ गेम्स दा भारत के सानरोय सिंह ने उठखिबा हाइथोई सिंथोई बसिंग

0: मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान थगड़ पुंदोक्षाय सोशल मीडिया थगलप वरोल मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हाई नरांग लोशन खिबा गेम्स असिदा भरना सनागे तकमान तरहुमदोय लुपागे तरातरे रमदी सेंजेंगे मापन पुण्य तकमान कुंथ्रामापन फंगबंगमखी मदुगे मनुंगदा राइज असिदगी सनागे तकमान अमा लुपागे अनियमदी सेंजेंगे अमा फंगबंगमखीबासिना लेबाग असिगी साना खोनबगे लमदा राइज असिना लौरिबो थौदां अमुक हन्ना लिंगसिंग हंतुना भारत की मिंगसर कया पुरपंगमले हाइना मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान सिंथाखी 33/11 केवी खुमन सबस्टेशन की लमलोंग फीडर मसुंग 33/11 केवी पोरोंपार सबस्टेशन की यारल फीडर हौजिक अयु पुंग निपानदगी नुंथिल पुंग मरी फाउबा शटडाउन तौगनी मसी जंगल कटिंग मसुंग डीटीआर सेंगदोक सेंगजिन तौगदबले बिदगनी मरमदुना फीडर सिंग सिना कोनबा खुराई टोप अमदी मोइरांग कंपोगी कंजुमर सिंगदा हारिबा मतम मसीदा मई पिबंगमलोय हाइना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की चेरोलमन हाइरी अमरोंदा 11 केवी नुंगबा फीडर नसीदगी हौरगा था असिगी तरित की अयुक पुंग मापनदगी नुमिदांग पुंग तरुक फौबा शटडाउन तौगनी मसी 132 केवी जिरीबाम लोकताक ट्रांसमिशन की लाइन तिंगदबा मसुंग सेमगा सागतपा लेगदबा असिनानी मरमतुना नुंगबा फीडर न कोनबा कंजुमर सिंग द हारिबा मतम सिंग असिदा मई पिबा गमलोय हाइना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की चेरोलमन हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी सुप्रीम कोर्ट की जज मसिंग हेनगठानबा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुंतरुक लोकसभा नंगरांग पास तौख्रे बिल असिना द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट लिसिंग अमा समापन याखि तरुक मखा ताना सेमदोक्तुना ख्वाइदगी वांगब कोर्ट असिगी जज मसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याउतना हौजिक लेरिबा कुंथ्रा होमदोइदगी कुंथ्रा तरेता हेंगलनबा पांदम थामली सही असिगी मेथादा सुप्रीम कोर्ट की जज मसिंग हेनगठानबगी अपामबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना फोंदोखिबनी ngarang lok sabha da kendra gi ail mantri emasung justice arjun ram meghawal na bill asi khanana ba pukat ki mangna hai masina ain gi lamda awon ba ma purak pangam lagani amadi haujik court asi da panduna leri ba case kaya athuba matam da loisin ba ngam lagani amadi leba ga sigi miyam da asumba wayal athuba matam da phangan ba sungam lagani bill asi khanadringi mamang da ngarang lok sabha da tongan tongan ba wapham sing da birodhi dol sing na charang na ba thon badagi sabagi mipham numit ung ba pung tarani thoi phau bui thoki sabagi mipham anirak yai thok lor ba matung da nungthil pung ani da kendra gi ail mantri arjun ram meghawal na bill asi khanana ba pakhal khi bani micro small and medium enterprises development अमेंडमेंट बिल लिसिंग अली कुंतरुक राज्य सभा नंगरांग पास तौख्राय बिल असिना एमएसएमई की चयनबमदि पिथोकतना लेरिब सेनफम कया अथुब मतम ता पिथोखनब पांदम थामली राज्य सभा दसु नंगरांग तोंगान तोंगान ब वाफम सिंग द सरांग न बथोपदगी हंजिन हंजिन यथोखी तोंगदा नुंथिल पुंग अनिदा मिफम अम होरकपदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री जितन राम मनसीना बिल अदु खननब सभा द पुखलखी सरांग न ब मरकता बिल अदु सभा न पास तौखी संसद की सभा अनिमक्ता मरुआई वाफम खनबदा विरोधी सदस्य सिंह थवाई यौन सरुक यादे हाइना केंद्र की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना विरोधी बुमराल सिरी संसद की मपानद पौमी सिंह वांगांगमद श्री रिजिजुना हाई लोकसभा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल लिसिंग अली कुंतरुक पास तौख्राय अदोमोइनमक बिल असी पास तौनब खनरकपदा विरोधी सदस्य सिंह सरुक याखिदे मसी यामना लैपक थीबनी मांगना है राज्य सभा दसु माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल लिसिंग अली कुंतरुक खनदुना पास तौखी मसीदसु विरोधी सदस्य सिंह खनबदुदा सरुक याखिदे मांगना है विरोधी सदस्य सिंह ना मखोई बुवा गांगनबगी मतम पीदे हाइना संसद की मपान दाबी किया तौरी मखोई की वा गांगबगी मतम पीबदसु मखोई ना वा अमत गांगदे हाइना महंगना मराल सीखी ngasi phongba pause singi maroi ba pau singi da ma hujek khetri mayum premsan leire premsan
1: Artificial intelligence amasung advanced computing gi international conference haukre haibe headline ase pugnu phamgi ahanbe headline ne sarkar amadi miyam punna thabak tomni duna rajya sada shanti purakna bo honari haina mukhyamantri ne phunokhi bo wafam manipur mail gi ahanbe headline oire mukhyamantri ki power se sangai express ki edition animakta ahanbe headline pidna phongbo thinare लैंगना शांति पुरकनब होनबद मखल अमतद कंप्रोमाइज तौरोय थोकलिब क्राइसिस असिदा असिगी मनुंग दा थोकिब क्राइम खुदिंगमकी जस्टिस पीगनी हाइना मुख्यमंत्री ने फोनोकिब वाफम नहरोगी थौदांगदा अहान बे हेडलाइन पीरी headline asugi makada sub headline oina griha mantri govindas konthojumna phonokiba wafam chathokchin yadribasi tha asidagi di ahong bakhara laklagani haina phongbu thinare sanaleba ki ahan headline asi manipur tongan tongan ba maramgi tongan tongan ba lupna kauba banna pareng lengle thabak cancel tawkibagi ban blockade handoktobagi ban NRC ki damakta ban haina phongbu thinare Mas kuntha mathoi lisung ani kundret fauguda gita mittal committee ki report pikhat lagani langa mari na bak case charung ama supreme court na august 13 da makha ta na khanagadori haib headline asi huen lan pauda ahan be headline piduna fongli framework agreement sagotuna rajya asagi opham kyada nagase na khongki chat khre haib headline asi people's chronicle gi ahan be headline pawasi ganfu mel tamilong times amri Hornbill Express su ahan behelan piduna phongmu thengnare SIR gi thabak singda ahobusing leiri hana leiramba minga nauna hablakpa minga chanadaba mayam yaure haina sangai express manipuri edition da ani su behelan piduna phongli dijamani
0: thagasari premsan aroibada maroiba pawmuk Kangpokpi jila ki Saikul police station na konba makok sing singsang parengi umangdegi security force na yamlaba khuzu khulai sing phangkhrai Mukhyamantri Yumnam Khemsan hairi Manipur gi sanaroi singna Glasgow Commonwealth Games ta urkhiba haithoi singthoi basingatu yanglaga leba ga sigi sana khonabigi lamda raija sina asoba thodang lauri haipadu amughanna urpangamle amasung supreme court ki judge masing khenganaba the supreme court number of judges amendment bill singani kuntaruk lok sabha na pass taukhrai pauloi sare
2: Tungan tungan ba thauram kaya sendoktuna tahanjareba si Akashvani Imphalgi FM Sangai channel digini Housek tabira si atopa mangalda artificial intelligence amasung its impact on education opportunities for Manipur hiramasigi matangda expert oinalingshin biriba Dr. Hanjabam Saratchandra Sharma Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Manipur Technical University. Puthok padating bangba, huining shumbam deep datta. Unabiriba amadi, thauram puthokba, raijinda jingtham.

0: आकाशवाणी इंफाल हाउसिक मणिपुरी दा मरोई बपाओ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इंफाल हाउसिक फबगे मरोई बपाओ सिक्युरिटी फोर्स न कांग पुपी जिला गे साइकल पुलिस स्टेशन न कोनबा मकोक सिंग सिंगसांग परेंगे उमंग दगे यामलब खुजु खलाई सिंग फंखराय सिक्युरिटी फोर्स न थी बोमगे थाबु सथा बदा खलाई सिंग तो फंखे बनी कक्सिंग जिला गे वांगु पुलिस स्टेशन न कोनबा वांगु ममई सिंग दगे मणिपुर पुलिस न केसीपी अपुन बगी एक्टिव कादर नि हाइबा मियो यमा महा की मयुम दगे फारे हाइरी कांगपुपी जिला की मरुंग सनबा मोरबोंगी सार हजारे दगी मियो यमा कानी किलोग्राम निफुमापन मखायरंग कोनाना मणिपुर पुलिस न फारे थौबाल जिला की मरुंग सनबा मोइजिंग लेंगोय जिल दगी मियो यमसु नोंमय यमति निसागी पोलम यावन लुपा लाख अमा मखाय हेन बगे सनफम ग कोनाना फारे हाइरी ग्लासगो द पांथो के बका मनवेल गेम्स द भारत के सानरोय सिंग उठखिबा हाइथोय सिंग थोय बेसिंग मुख्यमंत्री युमनाम खेमसा न थागत बफोंदो ख्रे राइज असि की सानरोय सिंह ने उठकी बाई थोई सिंह थोई सिंह लेबाग असि की साना खोन बगी लम राइज असि ने लौरीब थौदांग अमुक हन उठप गमले हाइना मुख्यमंत्री युमनाम खेमसा ने सिंथा की 33/11 केबी खुमन सब स्टेशन की लमलोंग फीडर मसुंग 33/11 केबी पोरोंपर सब स्टेशन की यारल फीडर हौजे अयु पुंग ने पान देगे नुथेल पुंग मरी फौबा सटडाउन थोगनी 11 केबी नुंगबा फीडर गसि दिगि हौरगा था सिगि तरेट के अयु पुंग मापन दगि नुमिदांग पुंग तरुक फौबा सटडाउन तौगनि मसि 32 केबी जिरिबाम लोकताक ट्रांसमिशन गि लाइन तिंगदब मसुंग सेमगत सागत पा तौगदब लैबदगिनि हाइरि अमसुंग सुप्रीम कोर्ट के जज मसिंग हेनगनाबा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल सिगनि कुंतरु लोकसभा नंगरांग पास तौख्राय बिल असिना द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक लिसिंग अमा समपनि आखिर तरु मकाता न सेमदोक्तुना ख्वाइदिगि वांगबा कोर्ट असिगि जज मसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याउदना हौजिक लेरिबा कुंथ्रा हुमदोइदिगि कुंथ्रा तरे ते हेनगलनाबा पांदम थमली पाउलोइसरे

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, के थाउ रमनी के नाव दिरा बनो ताजे ताजे हाई बियो। हेलो
1: होगी लोग शू बदन पी मनाई बदो बिंदी खंजा हो गिरे अदो खोजू याम ता बदन नुमाई
0: होय, ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ? ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯖꯒꯦ꯫ ꯍꯂꯣ,
1: ꯍꯣꯏ ꯅꯥꯔꯥꯡꯒꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯇꯧꯋꯦ
0: ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ, ꯂꯩꯐꯝꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯕ꯫ ꯍꯂꯣ,
1: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ.
0: ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ꯫
1: ꯅꯥꯔꯥꯡꯒꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ?
0: ꯑꯣꯍꯣ, ꯅꯔꯥꯟ ꯀꯣꯟꯖꯤꯜ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ?
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ? ꯂꯧ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯂꯣ,
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯟ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯄꯣꯠꯂꯣꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯐꯩ, ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯃꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ.
0: ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯠ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ꯫ ꯍꯂꯣ,
1: ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯆꯔꯦ. ꯍꯂꯣ,
0: ꯑꯧ ꯇꯥꯖꯩ ꯇꯥꯖꯩ, ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ, ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯖꯔꯒ ꯅꯣꯝꯖꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫
1: ꯍꯣꯏ, ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯦ, ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ, ꯀꯣꯂꯔ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ.
0: ꯊꯥꯒꯠꯆ�ꯔꯤ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ, ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज के
1: हेलो
0: थरमदा तारामनोक चरी कनावे बिरबनो।
1: नो दा नो कौन थे हम देगी मैं मा आई हज़िक सरांग थे हम फ़ोर लाय वांग देगी सरांग थे शामिलान हाय यू तो
0: ओहोय
1: दो ताव दावा वाकन जी हम नो आई प्लाई इतनी गार का हमने नो आय रा मोई कल रगा मोई पुगों हम देगा ना तो मैं तो शिम डाले थे ही तो ले हाय हाय तो जा बको इतना ही हम पूरे बा एंगो किसी तो उन्हें बको मैंने पूरी तो कैसे अगर वाय मान हाय तो तम्मा का तार करने ही तेरे की तार का तब की वाय मुझे हम लोग आते हैं बा आज तब तो माले आई थी सेंग ना माय वाय तार की यो तार कांग वो हम देखना तब की वाय मिलाई वाय सिंग तार तो मुझे काई काई भी जाने माना कर दी तो हम तो दूसरे तो जग के ना तो अपने दो रिंग से तो ओम सारे सुनता है पाइपी रहता बस सीज़ पाइपी रहा वो इतना पाखत बने खुद का पाखत खत है हम बने हैं बंद तो यहाँ बने तो वहाँ पे मरी रहने का सीज़ जा ले सीज़ सुनता है पाइपी रहते हैं तो सुनता है रोज़ खान बने जो आई पाइपी रहे एकदम ओके
0: मतांग जानरु दवगी और हम गनी है वैसे हाई जगह होए
1: दादू हम लोग सीए आई थी
0: chak chak ring ama na ching ching kok ama mang thok e hai bwa pham de ni mi pung khodi mak na hai be di mi pung khodi mak na phaba do he ni ni e du mi pung khodi mak phau hai be di kana na shu ya roi hoi
1: na tai
0: tabi ra bra
1: okha ga tare
0: tabi ra bra
1: okha ga tare
0: ato pa kari kari wa pham sing tham bining bolai ba ki hai bi
1: ตัวนั้นก็คือไอ้ตัวนั้นสักสักปานนั้นไอ้ตัวนั้นสักสักปานนั้นไอ้ตัวนั้นเนี่ยดูมันดูแก่ทำเจ้าด้วยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ ngam de isai gi sia
0: mhm
1: na good afternoon de ti ski si dai te din pi ha ta we ni na hang bang ab jar ra na sum ji ning bane ba do at sto de re mo no de ti ski de lu sai kan dai do tu sam mai do wa
0: dom gi wa fam lo sin jeri hayeng gi oi na di lak liba ogash ki tang mangai um se ke sin mit hayeng gi oi na di Good afternoon, ladies. Ki thoram da aikhoi ki wakat haidana thoram amukhak thamjeri thamjeri basida nupi singna senthok lambi leinabagi lambi yatpa haiba matanga sida expert oina Dr. N. Ranjana Devi, retired director, Institute of Cooperative Management, ICM, Imphal niling sing biraga lamdam sigi nupi oibi singa wari watai sanajabagi tanjamukhak lanthok jagadabani adom susodi namaki sarugya biyu Hello. Line C yamna nuai tabana maram oiraga line C tat kre myam punna wari loidri hairiba film asidagi e ke yango yamadi s ke mangang divya hobam loijing khombi ki apun bakhon zelda ojit babu ning thaujam na sairing ba nanau sagol mangna sairang bishe makhak taminasi

धन्यवाद सिल्की। यह आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईकॉम सिंह खेंगानवा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत जतिन ललित का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से सुजाता त्रिवेदी और कमाल खान की आवाज़ों में, गीतकार है महबूब और संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म हमारी अधूरी कहानी से अरिजीत सिंह का गाया गीत। गीतकार थे रश्मि विराग और संगीत जीत गांगुली का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के शांगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म लकी से लता मंगेशकर और अदनान सामी का गाया गीत। गीतकार है समीर और संगीत अदनान सामी का।

कार्यक्रम के आखिरी पेशकश फिल्म गजनी से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गीतकार प्रसून जोशी और संगीत ए आर रहमान का

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है सिल्की चनम्बम। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 那风度一些呢，你毕业些，半途一笔钱对你还不呢？
1: 嗯
0: 热钱那些，啊这个阿昌不付的那么利钱，现在马些不 TV 一马呢还不不什么呢？啊都阿我一年拼一利钱，
1: 嗯哼，嗯哼。
0: 现在哎呢用罢了，干哒用都在那里没把一个一瓦一铺了一把一个古堡，一年弄一把没样钱，
1: 嗯
0: 阿我不管呐，他没钱了，钱话懂你还不呢？
1: 哼，
0: 还得 color 呢，马给我色这问题还吧？
1: 嗯哼，嗯哼，
0: 아도 호시티 까나나 앙앙 왕 시절에 까나나 나쁘 시절에 갈래 미닝 강더바 이따래 거 아도 두가이리 이시 맞다면 보래 이니야
1: 음흠. 음흠.
0: 하이디 사이기 프리티비들 레이디바 옐로우 미 하이리 싱셰 옐로우 미시기 잖아 비제 로이 레이브네 차이나 수 레이브니 코리아 수 레이브니 모이기 시비기 토롬 레이니 로홍기 마파부 학탁게도 나가 레이브네 바
1: 마이 마이 마낫 레이바
0: mana ne ba japan da so jing dang na po bi ko sum le idna adu pung ani chang mo ni set pada jing le re di me tok le ne ba chum ra adu gum ba le po to mi gi lam da di kai ta thu gai de ba a khoi gi di loi mang de loi kai re ai
1: mani mani matam na su kar hong alak ad ye po chei a hui ho ji ji phang yim siga han phang ang bo su mana de sina kar mu hong alak mai kei mai am de ye hong bo si pirak pani adu za lak se ningi se ngsa gi maru ei na luhung bai ba si su a khoi gi lam dam stai sta tori si luhung pan tha na hai na ri bani luhung bai matam le lai harau bo gi su lai harau bai matam le ad hai ri ba o za gi costume center industry de gi thammi ba po chei mai am adu ga mas ista sinpham ma moina sengchel la kai ba missing cha mo gi sendan lan bi mo gi income mai tar ne ja sidi kar mai na to ye season nai bani na pasha si la pa matam sen tan ba matam nai bra asina off season nai na sen kya thok ba matam lai ba sumai na lai bra sei chu pa se dum sa tha ba ya ba tha ba koi bra
0: ka ma ma si sumai to we a khoi gi poloi su be si di la kan da su bu nang de ado na ai gi stok ta lai se khis ta poloi da tra ma lai ado han dak ti tra ma hap sal lage se wa li ge si jen yog de ge da hap to ne hai di hap ta mong da thabuk su lo ingam de ado mai ra ado gi
1: poloi mu su bu de ja ma tam kyam sang complete oi pa ju koi gi
0: ado de mi am na tu re di tha ma o
1: ma tam chang ma thabang ne ba
0: yam chang ne ma than na tu ro ge di ado ba mi ani um chang ga di help tok sal ga di koi ne chang da
1: अदुग कैनागी सेलिबो पोलोइसिगा अखोइगी जगोइ रासकी राधाना गोपीसिंग ने सेलिबो पोलोइसिगा समान प्रकार मान
0: समान ने
1: ओ अदुग मय वाइबगी मम लाइता रे ने
0: वाइबगी मम दी पोलोइसि अखोइगी अहनबा सारका अहनबगी रे तंग लोर ने बको अहनबसि मला कांड म खोइ रिपेयरिंग प्रोसेस है नंग थादर एब रिपेयरिंग सि रे छ खरम हला ने बको अदेगि लुहोम बद सुम छेत पसे सुम छेत पसिना मला कांड खोइ जगोइ रास्ता उ थादर प अदेगि हौसिक ति वैरायटी प्रोग्राम है ना होटल द करी द म पांदा मणिपुर ले ब जगोइ संसान में हम म पान चली द ना सोम द मूल होम बदगि मला पसिना सोम द सुम थाकिबा अदा हौसिक सि एई दि पोलोइ सि हौसिक सि अखोई होंगाइबा पोलोइबा सक्से आइदि क्या थमदे तसेना आइगोंदा हायार तो उम तमदसो मामांगाई अरी मा त तोले अनो बसे क्या तोते तरो पयावे आइगोंदा मंगा तृप्तिले अन होल गी पोट ओइन थाब तमददि हाने गे असेंग बदु दुम थाय होजिगी जिगजाग से था देब
1: अदुगा material size tare ja sidi loinamak mapan dagi ang sai su pan bu di yobi gre mapan dagi la ej jamma ki kai na hari se na maximum khoi na polo ma sa ba de sangi ba masak sing sidi mapan dagi na maximum oi brand ga khoi sai dagi na to kar mai to isi material se mapan ngak ta ne ba
0: mapan ngak ta ne edu ga kon sidi mapan na sangam de khoi sidi mapan dagi sar ga pusale pusale du moi de blo ne ado kana kum khara di edu dum si ne ado ka kana ho ma porna ai khoi mai te i port man de and the scene of the me shule
1: o
0: kon chi
1: polo shi na ta ba ta ye to pa phije le teng ma tang da kitang ga wari san na bgi ta ja dum lo je ge ja ai khoi gi lai harau bgi phije le che me ama ma o za gi industries de gi pu tho pi rak pa khoi theng na jai me am na la ga wai ri bani shi de gi ada lai harau bgi dress ai shi nu pa na she na ba nu pi na she na ba loi tong an bani ko ki le teng khut ki le teng ada gi she na na ba lit na na ba ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯩꯖꯣꯝꯅ ꯆꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯝꯃꯒ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ? ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ?
0: ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄ ꯅꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯤ ꯂꯩ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯝ ꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯝꯒꯤꯅ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯦ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄ ꯅꯝꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯖꯣꯏꯄꯨꯔꯒ ꯅꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯅꯝꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ
1: ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯝꯕ
0: ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤ ꯀꯖꯦꯡ ꯂꯩ ꯂꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯂꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯤꯛ ꯈꯔ ꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯩ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯤꯛ ꯕꯨꯀꯨꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥꯡ ꯏꯐꯥꯡꯁꯤ ꯁꯥꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯪꯗꯦ ꯀꯥꯏ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯗ ꯑꯩ ꯌꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯐꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯕꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯁꯣꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯋꯥꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯋꯥꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯄꯨꯔꯥꯅꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ
1: ꯁꯥꯟꯅꯕ
0: ꯐꯣꯛꯀꯨꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯌꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯐꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯐꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯐꯤꯁꯦ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯇꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯥꯇꯤꯅ ꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯆꯠꯄꯒ ꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯗꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅ ꯄꯤꯇꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯟꯊꯥ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗ ꯋꯥꯏꯗꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯅꯝꯅꯤ ꯈꯨꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯦꯐꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯅꯝꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯨ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯆꯪꯕꯗꯤ ꯐꯣꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯗꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯇꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯠ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯩ ꯄꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯀꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯇ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟ ꯊꯤꯟꯕꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯕ ꯀꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯆꯪꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯍꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯎ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯀꯣꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯨꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯊꯤꯜꯂꯒꯀꯣ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯂꯪꯂꯒ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯛ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯏꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯖꯥ
0: ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯔꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯨꯕꯨ ꯁꯨꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯔꯨꯅ ꯇꯥꯝꯕꯅꯤ
1: ꯁꯨꯡꯉꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ
0: ꯁꯨꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯨꯕ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯔꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯕꯗ ꯂꯥꯏꯈꯣꯔꯝꯃꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯦꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯁꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯇꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯡꯉꯗꯤ ꯑꯔꯤ ꯑꯅꯧ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯁꯦ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯖꯤꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯇꯧꯈꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯅꯧꯕꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯗꯣ
1: ꯐꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄ
0: ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯦꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯁꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ

0: मगरिब नु पानी असि म जान ता दिल
1: ओए वीडियो फिल्म नम दरे बताई जा
0: हिंग मंग हम नबने बेरे बाबो वा मल्ल ब सुमी गावे नुंगाई मल्ल ब सुमी मांगी अदुन अनी की मरक तंग हक नो वा सनदर बि पुंसी लीला से थुन लोई
1: ओ लीला संगदन बिषय द तारे ने
0: अदु मायना खन गे सु खन बिरो अदु ब खोई दे दुनते करी हाय गे सिन
1: खोई दो खोई दो छोलो लाइंगे सिदा बा भाई शंदे हां एदी का जकरा
2: कना मोलेती
1: का जकरा बा
2: वाईन मथा साने लाओ खोंग मदी थोखि बे कना मो हन जिलकती मखा द मई इंजोर हम द लेरंग उदर खंग
1: यार यार तो न वाई तो यार
2: कोई न तो
1: आई गोता कना नोई मंत्री ने तक तेजी कमाई थी जानो, हाँ, माँ शिम्बे को मीम काऊ रहने हैं, हम, ऐंगों द हो रहे थे बा, मंत्री वोशनो, ऐनी, वाइनिंग वोशनो, हिंग मत वाने ऐशन, ऐशे, ऐशे बिरेने, बिरेन कनानो शे, खंगने बो फाइको,
0: ऐशु कन्हाई नी कन्हाई, संद्र बाबू नते, मधु वादो ऐंगों हर कई कांड के बिरेन बाबू मसाद दरे है भी मास में इतने लोन थोपने मसाद दरे
1: नंगों ने हर शे मंगों ने पाओगे उठने बा
0: ओ
1: माबू मंत्री वन बच्चों आई ना बोर्ड कान बच्चों आई ना शिंबीर को मी मशक खंग दबे शे शिक्षण तो
0: वाले बोर्ड कान बच्चों ना नहीं मंत्री वन बच्चों ना नहीं नंग माग दिन उन्हीं की सामीन थमे न धनर लोई ना बनी ना ऐसु मंगों ने साउनिंग बाहिन को मरे हम ले अदो मंगों ने पाओगे उठने बा नंगों ने खरे हाई के आगे बा
1: न तीने ताक ना है मीनी पुत्र बखन बता ऐ क्या बताया होगा बच्चों बहुत शिवों का इनो में
0: अ तू भाई ने खन बनाया
3: आया मगर तेरो
0: लाऊं तो बिरे मावो खंगे तो विदा
1: ऐ दे शेल पे तो बच्चों मत दे अ तू क्यों ने आयुक्त तो दही बोल लाऊं ने कहूँ अ तू भाई ने पीछे बच्चे मके लॉय हंड दो लगा बिरे नंग या मुबो शानो चाऊ दे ऐ चाऊ दे
0: बिरे चाऊ दे
1: अ तू बो माँ भूमि ने शिवरे बसु ऐने हिंगने थमके दो कौरने अंगांचिं कौरने काप्तो रोशिलो नहीं ऐने हाय दुष्य वही यम खकतने मज़दे लाख पर एक्शन दे माँ माँ यंजा बता बा
0: कई कई नुमा गांगी से चुन्दे
2: नहीं
0: तार का
2: कई नुमा गांगी तो दिया हाँ न दिन नुमा गांगी तो बुकाई नुहाई बनिया बा न दिन थंग नुमा मीसिंग से तार का कुछ बुकाई नहीं
1: नंगी नौ पानु पारे थबक हम याऊ ब्रा ता कनाई ने मार्क तिंजन में खाई तो पोहने बुद्ध बो
0: कहाँ की ब्रा बा

0: ꯏꯁꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨ, ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯣ? ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯗꯧꯅꯤ. ꯆꯦ ꯆꯦ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒ ꯎꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯗꯧꯕꯁꯦ.
1: ꯇꯥ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯈꯔ ꯊꯨꯡꯉꯦꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕ?
0: ꯑꯣ, ꯊꯨꯡꯉꯦ ꯊꯨꯡꯉꯦ ꯊꯨꯡꯉꯦ, ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯀꯣꯛꯇꯥ ꯑꯍꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ. ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨ, ꯍꯧꯕ ꯍꯧꯔꯗꯤ ꯈꯜꯂꯨꯔꯅꯨ. ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧ ꯋꯥꯈꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅꯅꯕ. ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯠꯇꯦ
2: ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ,
0: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ?
1: ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯏ ꯄꯤꯔꯁꯤꯒꯃꯅ ꯑꯩ ꯈꯨꯝꯗꯅ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯤ. ꯅꯠꯇꯦ, ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯁꯤ ꯎꯠꯇꯅ ꯑꯩ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ. ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯁꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯁꯅꯤ, ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯞ ꯆꯞ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯥꯕꯨꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯈꯤ?
0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯗꯒ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨ, ꯃꯄꯤ ꯇꯩꯊꯣꯛꯅꯗꯅ ꯀꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ, ꯃꯄꯤ ꯇꯩꯊꯣꯛꯅꯗꯅ ꯀꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯧꯅꯥꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗꯤ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯕ?
1: ꯇꯨꯂꯁꯤꯒꯤ
3: ꯁꯤ ꯇꯨꯂꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ?
0: ꯈꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯦ.
3: ꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩꯅ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗꯤ ꯁꯔꯤꯛ ꯁꯔꯥꯛꯇ ꯆꯤ ꯂꯧꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤ, ꯅꯤꯄꯥ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ. ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯃꯥ, ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯋꯤꯅꯦ ꯏꯃꯥ.
1: ꯍꯜꯂꯣ, ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯏꯃꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ? ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯅꯣ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯥ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯅꯣ? ꯃꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅꯔꯝꯕ ꯍꯧꯅꯒꯦꯕ? ꯍꯣꯏ, ꯑꯩ ꯂꯥ ꯑꯩ ꯂꯥ ꯑꯣ, ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯉꯥꯡꯉꯅꯣ ꯑꯩ
3: ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯍꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯗꯔꯝꯒꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯠꯂꯝꯃꯅꯤ ꯃꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ?
0: ꯇꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯁꯨꯅꯤꯇꯤ, ꯍꯥꯞꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯟꯊꯟ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯅ ꯀꯦꯜꯂꯝꯃꯗꯧꯅꯤꯅꯦ.
1: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯛꯀꯅꯥꯏ, ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯦ. ꯍꯣꯏ, ꯆꯤꯟꯗꯤ ꯊꯤꯅꯔꯣꯏꯁꯦ, ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯔꯣꯏꯀꯣ?
3: ꯑꯣ, ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯅꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯁꯤꯗꯤ. ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ, ꯃꯁꯤ ꯂꯧ ꯉꯥꯐꯨ ꯐꯖꯅꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯅꯦ ꯃꯁꯦ.
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯃꯊꯟꯗꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤ? ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯗ ꯁꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯗ.
3: ꯑꯣ, ꯃꯥꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯊꯥꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤ.
0: ꯑꯣ, ꯆꯠ ꯆꯠ,
3: ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯉꯛꯁꯤ. ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯇꯣꯔꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ, ꯂꯧꯔꯤꯗ ꯃꯣꯟ ꯈꯥꯡꯉ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯁꯨꯅꯤ ꯇꯧꯔꯦ.
0: ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯁꯦ, ꯃꯥꯅ ꯇꯣꯔꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯇꯥꯒꯦ ꯇꯥꯔꯁꯅꯨ, ꯂꯧꯔꯤꯗ ꯇꯥꯒꯦ ꯇꯥꯔꯁꯅꯨ. ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ, ꯑꯩꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯑꯩꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯣ?
3: ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯆꯦꯜꯂꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ?
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯔꯗ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯇꯤꯁꯨ ꯂꯧꯔꯦ, ꯑꯁꯦꯝꯕ꯭ꯔꯥꯅ? ꯑꯁꯦꯝꯕ꯭ꯔꯣ?
3: ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯎꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ?
0: ꯑꯦ, ꯐꯩ ꯐꯩ ꯐꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯇꯧꯁꯤ. ꯔꯕꯪꯒꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛ, ꯑꯗꯥꯃꯣꯔꯥꯏ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯀꯣꯟꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯃꯃꯧ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯎꯔꯒ ꯁꯤꯅꯦꯅ ꯉꯥꯏꯔꯦ. ꯂꯥꯎ, ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯎ, ꯆꯠꯁꯤ ꯂꯥꯎ.
3: ꯉꯥꯏꯈꯣ, ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ
0: ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯨꯅ
3: ꯑꯉꯥꯡꯒꯩ ꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ?
0: ꯀꯗꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯥꯏꯅꯦ?
3: ꯍꯣ, ꯏꯄꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯌꯥꯏꯃꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯧꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯅꯤꯅ ꯇꯨ ꯐꯂꯥꯡꯁꯤ ꯍꯨꯠꯇꯣꯛꯑꯦꯗꯅ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟ ꯈꯥꯖꯔ ꯈꯥꯖꯔ ꯂꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯔꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯤ?
0: ꯑꯁꯤ ꯐꯂꯥꯡ ꯍꯨꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟ ꯈꯥꯖꯤꯟ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ?
3: ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯅꯤꯌꯥ.
0: ꯐꯩ ꯐꯩ ꯐꯩ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ
3: ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ,
0: ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ
3: ꯍꯩꯃꯥ
0: ꯕꯥꯕꯣꯛ,
3: ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤ?
0: ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ, ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁꯨꯇꯤ, ꯅꯁꯦ ꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ
3: ꯉꯥꯏꯈꯣ,
0: ꯅꯁꯦ ꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ
4: ꯇꯨꯂꯁꯤ, ꯇꯨꯂꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ? ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯅꯁꯦ. ꯑꯩ ꯇꯨꯂꯁꯤ,
3: ꯏꯆꯦꯗꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯏ ꯈꯣꯝꯕ ꯆꯠꯈꯤ, ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯣ?
4: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯊꯛꯑꯦꯕꯣ? ꯅꯪ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯪꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯗ, ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ?
3: ꯌꯥꯅꯤ, ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯦ.
4: ꯑꯣ, ꯈꯕꯔꯥ? ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ,
3: ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯏ.
4: ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯇꯝꯅꯤ,
5: ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ? ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯦꯞꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯗꯣ? ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ?
4: ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤꯅꯣ?
5: ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯈꯣꯝꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ.
4: ꯑꯩꯀꯣ, ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯍꯥ, ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ?
5: ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ?
4: ꯃꯍꯨꯂꯥ ꯐꯥꯎꯗ ꯅꯪ yumgi thaba inghang ji su buji su lep lep ti ne
5: siri phobai khoi sor hon gani sor hon bhai bese isane isagi thong tong zabani hing hing ni makai di isagi thau da mi ne tawir ba kha ngai da bani
4: khaya da lu na ngang le ni nong se e ai di mong na thong ma sai sang si mo dong na hau se khre da hau se gam gi ni bim sa sing si imong manung ni thaba inghang ji kaya hai thu sing joi da bani adu boi khoi mau si di phai ni
5: mi wai ba se hek thing na ba ga ma ya seng ma sa khang yam lui apang mai khoi di tha phari ma mau bu phai phati hai se khiro
4: tulsi nang na matam lebe khibik ta serious to odina tlaip si kari ga
5: ai ma tam pum da serious hoi di da adu bo ai ta go di i thau di ba pha ma tam mai khang sei ye adu nan bi re la mi du bo kai ha mi no
4: ai ma sa nu pi u na ba sum na sum la po rong ani ne ye mau bi ma bung bi ren si ya ai di on thong na nu si je kre da makhon ma wa khar sau je ya bi wa ni ya mabung ma pau di on thong na pha kre ai bu su ai bu su ma na lu pa la kun gutra ta wa thi ka am pa yo na ha ri ne khang je ta ru se ऑफिस के सिल्ली बथबक मतासिगा थबक सि तोक थोगा ठिकारोम द ओंदर जरन खंगलाइबा
5: मिहै बसे मीटिंग ओ ngang बवादा थासे बाय बसे हौना सानि अदुबु हि एनी तोंबा वाम लाइबनि
4: ओइने ओइने अदुबु अंतंग लाइबक इंसिडेंट ओ सारा करा करा करा करा
5: आइनोने दतै हि
4: काई देदा खंग द तौरिनिने
5: या या पिरो पिरो करा करा इसांग दो नंग सानिंग वम थोंग को
4: नसी गिदि सम थोंग हाइबसि मंगाय रे सम पुलम ग हाइर किनि बेमा आइ गिदि हांग नब द थोंग ए बिमोल दिया
3: कौजे रो हाइब्रा
4: आ यारे यारे यारे मा गि थबक सेट प नंग नब दो मदु दुम लोशन जरु चलो चलो सर
5: मता मो अखोय गि हे बहु सि मबु पाव दि हम सम जब जाने दा मा इ बकन आ द संगै सि बु मा इ मबु न नत्र
4: आइ mani ne hai hai biren launi launi launi
6: launi bai bua na sen bakti
4: ka ah yare yare yare kadom de ginu sen de ayuk da
6: bai bua makha tham bai tham chasaru ba
4: oh
6: ani bai bua chu na da kui de na sum cham chira pani da
5: hai be ma noi ta bola isa ba sem bo
6: ah ai yo de sa ya zare
5: yare ye to
4: ai ko di nu ne
6: ai bai bua ai khoi bi mo le ma tom gi thabok cha na she ne kum na thik lu kan de ne ओसागी लाख मरी मंगा लोइन पिने लेर मई वाने
4: ओ
6: अदो भाई मोश पजा पैसा तिंग थरा मने
4: आइ को येदी अमत तब तिंग होंगरे दा
6: हरि शिबो
4: आ नसी ने मंत्री दु खंगने नंगांग न रखपनी
6: ओ
4: अदो मंत्री दु न दि थबक तु मेरिट बेसिस त नियम सुम न थबक खन मने न हाइने
6: काय दे वाने दे भाई मो नशियल छु मंत्री दि ये थंग म पामो मने ले जरे मि
4: माने माने
6: नशी ने खंग या जरे बा मनुंग गि थिले बदिगी 1 2 5 बक्ति मेरिट खनि को अतै दे अमत याउ दि दे भाई हो
5: काय दे वाने साधु या बिरे ब्रा
4: ओ यारे यारे से से से से वे
6: वे मो ए कोई भी मोल बो
4: ए लेखिबने अजिक तो पिसन ने न लो छले हबर के नो हाइबने ने
6: ए ओ ए दी का हु गो इन
4: करी ले गे
6: वे मो ए कोई भी मोले मतम की थब की माई शेरे नंबर दुबो कया
4: माई को नहीं मा की शेरे नंबर दुबो
6: कया
4: ओ ओ शेरे नंबर 15 और माने
6: 15
4: होय कई दोर गे
6: ओ कछु तो दि हे थासे दबा
4: करिगे
6: इ बाय वने लुपा मुक्तिं दि हे थासे दबा यवाने दा अ दुई बाय मा आइ खै मंत्री से अ फब दि याम शाने बको अतु ग माई काने ब थबा मे हेक तौ दरबा अदु दि हे थासे दबा
4: आइ दि बिमोल गि थबकी मतांग से ऑफिस की थबक याम करना चेंज क्लक पतन जा थोकि दना आइ करिम त याउंग मौद्रे नसी ने मंत्री दु खंगने ने मान गांग न खले इनि ने
6: सी ने
4: ओइ ने
6: अ दै भाई बङो आइ बो वाफम जिबो इ सिनजिन
4: कैनो हेताय हम
6: अस भाई वयाम हंगो इबो वानि
4: एरा बिरेन कै दु बङो दुने नबाय दबो हायुने हायुने नङ हायनिङ बुदु हायुने
6: इ भाई बङो ना हायो दे हायजर गि
4: हाय हाय हाय
6: हेउने भाई बङो आइ खै मन्त्री से आइ खै मन्त्री से नुपी थि दे थि दे हारे गने मसागे मङो न वानो मलाय ब मङो ना सिन छे मागि ममे तुने खङो रबो दि हेक थौ मिना अस भाई बङो आइ दे खै मङ मरी मता गाइ दे छौ जाम जाम दे छि रेन बेबो आइनो इबाय बङो दोकाना न दिने जमायम निगो युनि बेबो आ सेक्रेटरी तलेबो माय कन्फिडेंस नुमसे मशिया सो बमै काने हायबे दिबाय बङो नशे ने चेंज निगो संपन पनिंग दिया छिनै पनिंग दिबाय बङो पनिंग
4: तुलसी की भवन
7: तुलसी
4: कनाई भवन
7: तुलसी तुलसी
4: खंग निराशिते
7: भाई
4: हेलो 그나 마네 호이 레이 야니야니 빠인 자르게 아 둘씨 둘씨
5: 깨달으기
4: 그나 이폰
5: 깨달으기
4: 능 폰에
5: 폰 그나기노
4: 근데
5: 알로 하 그나 아이마 담아
4: 미니시타게
5: 얌 다스디 응 아이라 미니스터니
4: 미니스터
5: 왜 담아 응 아이 코이 비몬 비리는 게 무슨 비기는 로홍이 봐 아이 락스게 담아 눈비당 눈다보는 왜 락스게 담아 호이 가리기 뭐 사노다 담아 담아 담아 담아 담아 담아
4: 아샤 아이 뭐 어저께 다 답이 오래 되나 나띠 만트리나 할액부터 먹다 하듯이 시에는 컴리 빠꼼치는 컴비를 보내 들으면 이봐 이모 쟤라 잔드라바보 넌 컴로 되더나 아이 먹기 머리 못하니 컴로 파보다 많은 와카를 신가시발 홍들이 봐 빨리 아이 짭짜는 하네 이렇게
7: 미렌
4: 미렌
1: 야니바
4: 미렌 없는 막세 나바이는 미풍 그림 막보 엄마 또이는 샴날 오르세 에이 강망함대
1: 배봉아 배봉아 배봉아 나 시에는 이제리시디 나 시에는 번호번 오이신이네 나한테 와펌시부 와펌시부 이바이 뭐제 속보 깍더라봐 염식이 나 시에는 시야오니 제 속보 와펌니 이바이 봉아 나 시엔 이제 기대 먹대디 시입에 기대 말고.
4: 어디 봐 이모가 와펌시야 시엘리바이 강시대기 나 공원이 시원 미가 누구?
1: 아이 땐 찰레비야 대 말고. 알아 안 못 오버 미싱케. 아이 대봐 너의 하동이 부자. 말고 나 시엔 여우자네.
4: 아이기 둘씨나 아이기도 마크 이 뭔가 시기도 마크 사범 탁품 강드는 것이 엔지엘이고 아이기 둘씨나 샤금 남자트 아이 강망암대 아잉암대 에이캉놈데
1: 라이브와 멍원의 와놈을 라이브 멍원 하신시 마귀 맘에 뜨는 캉으로 보이디 핵토함이나 아씨 라이브와 아이디 코이 목머리 이마 다가이디 총장장이 되시네
5: 담아 아이 락스게 담아 놈이 당 놈다 와이랑 왜 락스게 담아
7: 너

आई वो कई दिल्ली में गेंद रहता में तो खोलने के दम दम दम दम है के फूरी ने तां खल पकांदा पाम कई दिल्ली ते वनी ने बुआ मताश दे बुआ कई ले ती जना फूरी में ने सुंग थोरों लबदा मापुई बुआ मरानी थोंग ने दीना आई बुआ पाम कई ने ता तो खीबनी जना पाम कई की मुखुशले के नौ ने थिले के नी दो इतना आई बुआ मरानी थोंग ने दी मीन ताम उपाय नी ही ने का पुरी मत मी ही ने का नू इतना

0: इतना हाथ पे तारे चलो चलो खुदी मोगी ना ही मत हुई कलू जो हुई दाना आई मुंह थाम जीने कोई नहीं मची था रखते नहीं बाहरी वो मरांग था वो पुरी में गता है वो अनी की मरक तो आदु दे वो पाम कई लोई नहीं वो फल एक चुंग थोले रगा मरानी थोकता मदरी वो पाम कई शिन फल
1: बेनागी सहेकता सोयबम तोंबी सिंह ने सकपा पुरे मन थुप्पगी मता नशी थोरुंगी आहान बोइना इचबे मतामी नरे
2: होय ताजरी बुंग
1: थोरुंगी मखा छथजर पसिदी नशी से लेबा पोपन मिट ओइबनिना लेबा पोपन मिट खदिंगी याई फिम बलदे उम फम मोइबा लीला मचाम हे हे थमजई
2: होय
1: नशी थमजरी बे लीला गी ममिंग पुंसी सिमगी बिदाई लीला इबा अरिबम शांति कुमार शर्मा पुथोकपी थोचम रेनुबला दुगो पुथोप द तेंबांग बना हेम चानिंग थौजमनी
2: होय
1: अददि लीला मसा सिमा अरोय बोय न तामिनसि
2: फनी फनी बुंगो तामिनसि
3: हौसि ताबिरसि याई फयुंबाल गि लीला मचा पुंसी सिमा गि बिदाई लीला इबा अरिबम शांति कुमार शर्मा लीला पुथोप थोचम रेनुबला अमदि पुथोप द तेंबांग बा हेम चानिंग थौजम हौसि लेजरे याई फयुंबाल गि लीला मचा पुंसी सिमा गि बिदाई

0: ꯏꯁ ꯏꯕꯦꯝꯃ, ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯁꯦ ꯏꯃꯥꯟ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ. ꯅꯕꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯊꯟꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯀꯦꯅ ꯃꯧꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕꯔꯅꯤ ꯅꯪꯕꯣ?
1: ꯑꯁ,
0: ꯌꯥꯔꯦ, ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯣ, ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯨ. ꯏꯃꯥꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯨ, ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ. ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯥꯅ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯧꯔꯦꯝ ꯋꯥꯔꯦꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯕ.
1: ꯑꯁ, ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯏꯃꯥ, ꯍꯥꯏꯔꯨꯗꯅ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯐꯠꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯋꯥꯈꯟ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯜꯂꯒꯅꯦ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯇꯥꯔꯝꯗꯕ.
0: ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯅꯦ? ꯆꯥꯎꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯌꯨ, ꯏꯃꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯃꯤ. ꯃꯥ ꯎꯅꯔꯒꯅꯦ ꯃꯁꯥꯗ ꯆꯩꯔꯝꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ, ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯕꯣ?
1: ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯏꯔꯨꯖꯔꯝꯒꯅꯤ.
0: ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ, ꯏꯃꯥꯁꯨꯅꯦ ꯆꯠꯂꯒꯦ, ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯅꯥꯍꯟꯒꯅꯨ, ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯎꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯥ.
0: ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
0: ꯏꯃꯥ ꯆꯠꯂꯒꯦ, ꯏꯃꯥ ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯥ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕꯗ ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯖꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅꯅꯦ ꯋꯥꯈꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ. ꯖꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯏꯊꯣꯡꯉꯨꯗꯅꯅꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯨꯝꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ. ꯈꯜꯂꯨ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩ ꯈꯣꯏꯗꯧꯁꯦ ꯆꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯧꯔꯤ, ꯆꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯧꯔꯤ. ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯃꯄꯥ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯔꯗꯅꯅꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯄꯣ. ꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯣꯕ ꯇꯣꯛꯑꯣꯕ. ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤ ꯁꯤꯄꯦꯠ ꯁꯤꯄꯦꯠ ꯍꯥꯃꯤꯁꯤ, ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯕꯦꯔꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯔꯅꯤꯁꯤꯗꯤ. ꯅꯨꯄꯥꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯅꯦ ꯁꯤꯀꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯇꯦ, ꯖꯣꯍꯥꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯆꯝ ꯂꯩꯕ, ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯇ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ. ꯉꯁꯤꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯅꯅꯦ ꯀꯣꯛ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤꯀꯣ.
2: ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯧꯒꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪꯁꯦ.
1: ꯂꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ
2: ꯅꯍꯥꯛꯀ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ? ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯝꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯆꯨꯞꯄ ꯁꯨꯝ ꯉꯪꯗꯅ ꯇꯧ ꯅꯠꯇꯦ? ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅꯣ ꯅꯪꯕꯣ?
1: ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯁꯧ ꯂꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕꯤ ꯁꯧꯔ ꯍꯥꯏꯕ?
2: ꯍꯩꯃꯥ,
1: ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣ, ꯁꯦꯜꯗꯨ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣ, ꯑꯩ ꯏꯁꯧꯒꯥꯝꯗ ꯂꯥꯡꯖꯔꯣꯏꯌꯦ, ꯂꯦꯝꯃ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯄꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ. ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯌꯨꯛ ꯀꯟꯇ ꯑꯉꯟꯕꯁꯤꯗ ꯐꯤꯔꯣꯟꯒ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯦꯠꯀꯠꯄꯤꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ? ꯆꯐꯨ ꯌꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯡ ꯊꯥꯡꯉꯒꯅꯦ ꯇꯧꯅꯨꯀꯣ, ꯇꯧꯅꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ?
2: ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗꯪ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯨꯒꯦ ꯅꯪ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ
1: ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯕꯗꯤ? ꯍꯥ, ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗꯅꯦ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯁꯨꯋꯥꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ? ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯅꯔꯥꯡꯗꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ? ꯃꯈꯣꯡꯁꯤ ꯁꯤꯄꯦꯠ ꯁꯤꯄꯦꯠ ꯍꯥꯃꯤꯁꯦ.
2: ꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ?
1: ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯅꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯎ ꯁꯦꯕ, ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯣ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯩꯅ ꯀꯞꯄꯤꯁꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯅꯤ ꯇꯨꯝꯊꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ.
2: ꯑꯗꯨ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯁꯦꯟꯗꯣ ꯄꯤꯔꯣ ꯄꯤꯔꯣ.
1: ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯁꯦ? ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯅꯣ?
2: ꯅꯪ ꯏꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯔꯝꯗꯨꯗꯤ?
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯁꯦꯟ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯎꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ?
2: ꯍꯩ, ꯑꯩ ꯎꯔꯗꯤꯅꯦ ꯉꯥꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯕ, ꯈꯪꯉꯕ?
1: ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇꯣꯛꯅ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ?
2: ꯑꯗꯨ ꯁꯦ ꯄꯤꯔꯣ ꯄꯤꯔꯣ, ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯦ.
1: ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ.
2: ꯏꯃꯥ, ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯣ, ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ.
1: ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ?
2: ꯏꯃꯥ, ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ.
1: ꯑꯁ, ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ.
2: ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯔꯣ, ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒꯦ.
1: ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ? ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ? ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ?
2: ꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯆꯤꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯒꯗꯕ, ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯒꯗꯕ
1: ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯁꯤꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯨꯗ꯭ꯔ ꯁꯨꯅꯤꯡꯗꯕ ꯖꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯅꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯗꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯑꯩ ꯒꯣꯛꯆꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪ
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅꯦ
1: ꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯔꯤꯕ
2: ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯆꯠꯆ ꯃꯤꯅꯒ ꯂꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯃꯆꯤ ꯃꯆꯤ ꯂꯧꯗꯕ
1: ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯏꯀꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯤꯡꯗꯕ ꯖꯨꯋꯥꯔꯤ ꯀꯥꯇꯟ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒꯅꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ
2: ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯦ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯃꯤꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯇꯥꯕ
1: ꯍꯥꯏꯃ ꯑꯦ ꯅꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤꯍꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪ 아이코이데 영웅 일러가 레이게시니네 능 하이시야 하 이까이면 까님다 컹드바 자라 해봐 능보 하 영웅이면 누파시니 땅 가이시브 누파가위 땅 가이시바
2: 오 땅 가이시게라 마뿜시게라 하이닝게 하제전 아이디카림테 까이비디 제 마땀시 아이오그레 짤라기미미 자비루 오미
1: 야로 해봐 신시디 야로 해봐
2: 어이 무슨
1: 신
2: 반자이가 그 찐그라
1: 찐이가 또 이제 마세요 가능하고 가서만 하루 하루 와시니 ऐसे लमजेन ने हमने यहां का पड़ी को नेशनल की थाते ने 100 मीटर रन ने गोल्ड मेडल के आरंभ में ने लौट के बताओ नम नम हेलो आई सी ने को हेलो
2: मैं तो नहीं तो सी सीन बस यार दूरी तो इस मारे तो तना को तो चेलो ये चेलो ये चेलो ये से सीन दो पीरो से हिदा तो इले रम के से ले
1: पीरो है बा कर इसे नो पीरो है बा
2: मैं आज दे दी कराई दे को लगे हिदा तू ले के दो बा पूरी कागज से गेम तो सुयाओ गया सा भाव मिनो दे ले लगे ने तबुदुई खंगाबा चलो कैसे
1: नंगी ना गुंजे पचन खंग मसानी को जवार की ता तो एंगोन ने हौजी तोरा अनो है बा
2: हेमो
1: यू थाम बदगी मदु आइना लान तो बदगी नंग तो खरे दना
2: होई ने
1: होई ने दना हौजी कमु थबक सुनिंग दबा अहाओ बदि तनिंग बा जवारी कतन मयाम दुगन होतिन वथिंगा वदोरी ना सो हा ना साले नि काशिन करीम त खंगरा बरा है बा यम दगी लौबया म मखै लौ रे हौजी लौ रो रे
2: अनार तो पीने कई
1: किलो कन मना गांव से नमरो लमा सिंग तो पायो बा गांव से तो पायो बा
2: ताई
1: ताई दिने ताऊरी सिद्धि नागन काशी
2: आई दिस हाई नगी दिए से
1: कोई नो हाई न तो भाई सिबु
2: पुओ पुओ तो माने ने चिड़िये तक ओए ने ताई दिने ताऊरी से तो ऐस
1: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你

पानकप लिसिंग अनि कुंतरुके रिपोर्ट ताबी क्रे थौरम संदोक्तना तहन जरी बसे आकाशवाणी इंफाल के एफ एम संगाई चैनल ने हाउसिक पुंफ मसीद पुदुन लाक्सरी गुड इवनिंग मणिपुर।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मतांग सिदा गुड इवनिंग मणिपुर संदोक सब लुइजरे थरम सरुक याबिर खिबा मदि थरम मसिदा हौबदिगे लोबे फावता बि खिबो ख्वाइ पुनो मपु अमुखना थागत पु फोंदोक सरी आकाशवाणी इम्फाल हाउजिन मिदागी पुंगमा पल्तारे मणिपुरी द पाव ताबिरसी
4: आकाशवाणी इम्फाल नांगुम किरण पाव पजरी

साहित्यिक धोरोम ताबिख्रै धोरोम संदोकतुन तहन जरिबासि आकाशवाणी इम्फाल गे एफएम संगाई चैनल गिनुमि दांगि धोरोम परेंगनि हौजिक पुंफ मसिदा लांथुक सरी इसैगि मथेल लक्ता महौ सामदि मियोइबा

गए हैं हम वो हसीन मुस्कान लेकर आ गए हैं हम वो हसीन मुस्कान लेकर अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज का हर श्रृंगार अर्पना के साथ वक्त हो गया है 10:31:17 तो चलिए शुरू करते हैं हर श्रृंगार की एक म्यूजिकल जर्नी जो 30 मिनट तक आपके साथ चलेगी रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले से ये शुरुआत होती है एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है

देखिए प्यार और मोहब्बत होती तो ऐसी ही चीज है, आप जितना भी ना ना ना ना करते रहें, अगर वो होनी है तो हाँ हाँ हाँ कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वक्त के साथ खामोश जरूर हो जाती है। सच्ची मोहब्बत मिले भले ही ना, लेकिन हम उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। अगला गीत लता और किशोर की आवाज में, फिल्म का नाम है जूली।

दोस्तों जरा सोचिए और ये बताइए कि प्यार मोहब्बत हो या रिश्ते निभाने की बात हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों को निभाना, वादों को बताना या फिर

भरोसा। अब एक छोटी सी बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में, वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों पर जहां निभाने वाले पर भरोसा होता है। तो क्या जरूरी है, वादे निभाना जरूरी है या भरोसा जरूरी है? अगला गीत एक बार फिर से लता जी और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है आग ले लग जा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:47 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार और हर श्रृंगार में आज अर्पणा आपके साथ है

तो दिल है दिल का क्या है अब इस दिल को क्या कह सकते हैं तुमने देखे होंगे हजारों ख्वाब मैंने तो बस तुमको देखा है उनके हजारों ख्वाब और आप उनके लिए कितने खास हैं या वो आपके लिए कितने खास हैं ये तो आप ही जानते होंगे फिलहाल अगला गीत शब्बीर कुमार और आशा जी की आवाज आखिरी गुलाम फिल्म से होगा और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार समाचारों के बाद 11:10 पर होगा पुनः प्रसारण मार्केट मंत्रा का 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण और 11:40 पर होगा आप सभी के लिए गीत मेरे मनमीत संग रहूंगी आपके मैं अर्पणा फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: The This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel that sank in the Red Sea off the coast of Yemen today. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. An Air India flight AI2379 operating from Phuket to Delhi today experienced a brief in-flight turbulence related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all passengers and crew have safely disembarked. The aircraft was carrying 137 passengers and 8 crew members. Air India said that of these, 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to hospital for medical evaluation. It also confirmed that there have been no serious injuries as of now. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision SIR of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification by booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on 27th October. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh today said that ethanol is a big opportunity for the farming sector, provided its policy is farmer-centric and the correct price of the crop reaches the farmer directly. During a meeting with a delegation of the All India Kisan Coordination Committee held in New Delhi, Mr. Chauhan heard all the suggestions of farmer leaders and assured that the government will take their views on ethanol seriously. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. In badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garga and Pruthi Krishnamurthy Roy upset sixth seeds Kelimpong Charo Enkita Morn and Warapol Thongsanga of Thailand 21-16-21-18 to advance to the men's doubles second round at the Korea Masters tournament in Assam today. And that is the end of this news bulletin.
4: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य एके भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है
2: नमस्कार धन्यवाद
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया
0: Before we move on to the stories, let's first take a look at the headlines for this evening. Benchmark domestic indices snap four-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline and Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow.
1: घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों से जारी खरीदारी का सिलसिला आज थमा सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का निफ्टी 24,615 दर्ज हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम नीचे आए और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कल रेपो दर फैसले के बारे में घोषणा करेगी
0: And Manoj, I feel before we move forward, we should also make something very important known to our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment before taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से खबरों का सिलसिला घरेलू शेयर बाजार में लगातार चार दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला आज थम गया और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 210 अंक यानी 0.27% घटकर 78,429 पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी 0.64% नुकसान के साथ 24,615 दर्ज हुआ विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा जबकि खरीदारी से स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे स्नैपिंग अ फोर डे गेनिंग स्ट्रीक अहेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट डिसीजन The Sensex shed 210 points or 0.27% to close at 78,429. The Nifty dropped 159 points or 0.64% to settle at 24,615. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell by 0.3%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. Earlier, the markets opened on a mixed note following the implementation of the new closing auction session, which was introduced yesterday. The Nifty and Sensex witnessed divergent movements during the first half of the trading session. However, both indices remained under pressure in the latter half. The Nifty eased significantly in the final minute after the conclusion of the closing auction session.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक में सम्मिलित 30 कंपनियों के प्रदर्शन पर आज 30 में से 16 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ बंद हुए सबसे अधिक बढ़त वाली कंपनियों में ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर सम्मिलित रहे इनमें 1.1% की वृद्धि देखने को मिली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स को 0.9% का और टाटा स्टील को 0.6% का मुनाफा हुआ उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके शेयर 1.7% नीचे आकर बंद हुए एनटीपीसी को 1.6% और एचडीएफसी बैंक के भाव 1.5% नीचे आकर बंद हुए
0: With that, let's also take a look at the sectoral indices on the BSE. 19 out of 28

0: देखेंगे। खासतौर से हमने पिछले कुछ सत्रों से विशेष रूप से कल भी देखा और आज भी देखा कि अंतिम क्षणों में बाजार में अपेक्षा के बदलाव काफी तेज रह रहा है, क्या प्रमुख कारण रह रहे हैं इसके?
1: देखिए जो मार्केट का जो ट्रेंड जो है वो मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों में बल्कि कई सप्ताहों से जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो कल का जो मार्केट जो था उसमें जो चढ़ाव हुआ था उसमें उसका कारण भी इंटरनेशनल था, क्योंकि ट्रंप साहब का ऐलान में एक आशा था कि शायद ये एग्रीमेंट सीज़फायर एग्रीमेंट अब तय हो जाएगा, उसीलिए कल मार्केट चढ़ा रहा। पर आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि उसमें दो प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो है कि कितनी जल्दी ये सीज़फायर एग्रीमेंट रेजोल्यूशन होगा इसका, और दूसरा है कि क्योंकि उसमें डाउट से क्रूड ऑयल प्राइस में इंक्रीज हुआ है, दाम बढ़ गए हैं उससे, और तीसरी बात जो है डोमेस्टिक फैक्टर एक आया है उसमें कि जो LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो जिसका लिस्टिंग हुआ था एक दो साल पहले, उसका जो गवर्नमेंट के पास अभी भी उसका 96.5% शेयर सरकार के पास है, और सरकार ने आज से चालू तय किया है कि करीबन 6.5% और जो LIC का शेयर वो मार्केट में उसका वितरण ऑफर फॉर सेल में जाएगा। उससे काफ़ी LIC के ऊपर भी प्रेशर आया क्योंकि उनका दाम करीबन 7% नीचे आ गया, और जिस प्राइस में वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं शेयर्स उस प्राइस में दाम वो आ गया है, और उसको खरीदने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी थोड़ी बहुत बिकवाली भी हुई है। सो ये विभिन्न कारणों के लिए मैं आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट में जो जो उतराव चढ़ाव जो हुआ है इसका कारण ये है, और अंतिम आधे घंटे में जो हो रहा है वो जैसे आपने भी कहा कि एक जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है उसका, हालांकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए है सिर्फ, पर उसका एक प्रभाव ओवरऑल ट्रेडिंग में भी आया है।
2: So, do you identify any other triggers behind today's market movement in the benchmark indices, first of all? And second, perhaps now's the right time to simplify the closing auction session for our listeners. So, if you can briefly explain it in one or two lines for our listeners to understand that better.
1: Well, you know, as far as what impacted the stock market today, I've already said, and it's essentially a combination of external factors and domestic factors. External factors being little uncertainty over how the West Asian crisis will get resolved. And the domestic factors, there were two essentially. One was the offer for sale being starting for LIC, which is a huge big company, stocks. So 6.5% stocks going to be floated. That has put some pressure on the market. The second factor, domestic factor, is that tomorrow the Monetary Policy Committee will come out with its stance or rate decision. Although the market expects that there will be no rate increases, there is some sort of nervousness that is gripped the market. So these are the factors that influence the market developments today. As far as the closing auction session is concerned, this is a new device which is to ensure fair price discovery. That is one of the key objectives of the closing price auction system. The other is also to prevent market manipulation. And what used to happen earlier was that in the last 30 minutes of trading, there was a lot of fluctuations take place because the system was to arrive at the futures and option pricing and the based off average volume-based price. So last 1 or 2 minutes, there will be a lot of orders will be placed.

0: at a certain price to influence, because the volumes should be high since it is a volume based. Now that has been changed and it is an auction driven, and a cap has been kept that the price to be determined will have a minus plus minus of 3%. So you are not seeing so much of fluctuation. There is transparent price discovery, and this benefits particularly the passive index funds. So it doesn't really impact the people, investors, retail investors who are coming into the market. It is largely aimed at addressing the day traders' concerns and convenience.
1: आपने बहुत अच्छी तरह जो ये एक नई कह लें कि प्रथा शुरू हुई है बाजार में, यह कुल मिलाकर बाजार में जो एक अनिश्चितता थी और मैनिपुलेशन हो रहा था उसको रोकने की ये कवायद है. इसमें जो नीलामी की प्रक्रिया होगी, क्लोजिंग ऑक्शन, वो क्या दर्शाती है और उसका निर्णय कौन लेगा, कौन से पक्ष उसको तय करेंगे?
0: ये जो स्टॉक मार्केट जो है उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उनको तय करना पड़ेगा. उनको ये जो आधे घंटे में जो सारी जो ट्रेड जो आएंगी उनकी एक एवरेज बनाया जाएगा. उसमें पहले जो वॉल्यूम बेस्ड जो एक एवरेज प्राइस निकालते थे वो अब वॉल्यूम बेस्ड नहीं होगा, और दामों की जो तय होगी वो 3% ऊपर या नीचे के अंदर ही रहेगा. इसका मतलब जो पहले जो होता था कि बहुत जो मार्केट में सारा दिन एक प्राइस गया और लास्ट मिनट में वो प्राइस बदल के जी, उसको इन्फ्लुएंस करता था मार्केट को, वो होना मैं समझता हूँ कि वो कम हो जाएगा. और ये एक सुधार के तौर से, रिफॉर्म के तौर से एक एक, एक, एक, एक काफ़ी अच्छा एक कदम है
1: जी. यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि बाजार में चार दिनों से हम तेजी देख रहे थे, आज भी यदि हम देखें तो सेंसेक्स पैक की 30 में से 16 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई हैं. यदि हम नेशनल स्टॉक को देखें तो वहां पर मिड कैप 100 इंडेक्स में गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा बढ़त के साथ गया है, बंद हुआ है. तो कुल मिलाकर ये क्या दर्शा रहा जो यानी बाजार है उसकी
0: बाजार में? सही प्रश्न किया आपने. बाजार में जो सेक्टोरल स्टोरी जो है वो ज़्यादा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है. जैसे आपने कहा कि मिड कैप में थोड़ी बहुत दुर्बलता नज़र आई आज, प्लस कॉल स्मॉल कैप में
1: मजबूती
0: दिखी. आईटी में बहुत धक्का पहुंचा क्योंकि आईटी में जो एआई और जॉब्स एंड अर्निंग्स के ऊपर जो लग रहा है. और जो ब्रॉड सेक्टर्स जो हैं अगर आप देखें, क्योंकि कॉरपोरेट अर्निंग्स जो अभी तक जो आई हैं अगर आप देखें तो कॉरपोरेट अर्निंग्स उतनी ख़राब नहीं आ रही है. हालांकि शुरुआती दौर में बहुत अच्छी थी पर पिछले एक हफ्ते में अच्छी नहीं आ रही है. पर जो कॉरपोरेट अर्निंग्स की कैसी जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि अगले कई दिनों में इसका रुख इसके ऊपर निर्भर करेगा. और ऑफ कोर्स जो कल का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय होगा उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस तो जरूर होगा
1: जी.
2: Very well, and with that, let's take a look at the next story for this evening. Bharti Airtel Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 18% year-on-year to 58,539 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased over 37% to 8,167 crore rupees on an annual basis. And with that, it's also time to take a look at our story about crude oil. Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading 2.6% down at $81.57 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.3% lower at $77.65 per barrel when reports last came in.
1: खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है. उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा. इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी और एलएनजी की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की गई। नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उपलब्ध कराई। उन्होंने बैठक के दौरान सदस्यों को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। श्री पुरी ने कहा कि इन उपायों में आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़कर 41 पहुंच गई है। घरों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई। श्री पुरी ने यह भी कहा कि इन सब के अलावा उत्पाद शुल्क में कटौती, तेल विपणन कंपनियों से समर्थन और निरंतर निगरानी ने उपभोक्ताओं को वैश्विक मूल्य और आपूर्ति में अस्थिरता से और अधिक सुरक्षा प्रदान की।
2: Here's something that I would like to know on the movement of crude oil. So we've all been well aware of the West Asia crisis. Now for an ordinary Indian, where does this crisis eventually show up? Is it petrol and diesel? Is it the LPG cylinder? Is it electricity costs, inflation, or is it elsewhere? And second, what is the typical lag between an international oil price shock and its impact on Indian consumers?
0: Well, to answer your last question first, the impact is immediate almost. If there is an international crude oil price increase that happens, then the oil companies are immediately impacted and their cost of operations take a hit. Now, what has happened in India is that the government has stepped in. The government has stepped in many ways. What we have seen since 28th February, when the problem erupted on West Asia and the Strait of Hormuz, and you have to recognize that almost 45% of India's total oil supplies come through the Strait of Hormuz. So now, when 45% of almost half your oil come from the Strait of Hormuz, and that is blocked, international crude oil prices have also gone up. So what the government did was applied and adopted a graded approach. Initially, the government decided to reduce the duties, the excise duty on petrol and diesel, so that there is no need for the oil companies to pass on that extra hit, mm-hmm. the additional, the cost increase that they had to incur. So that was number one. So as a result, what happened was in the first few weeks, there was no price increase, but there was a price of increase of around 8 rupees per liter, 10 rupees per liter actually, for both petrol and diesel. Now that happened after about a month and a half, but at the same time, what we did was that the sourcing of our petrol and diesel, that was diversified in a sense that earlier we bulk of our oil was coming from West Asia. We diversified our source. Russia once again became our number one supplier of crude oil. Russia used to be number three or number four. Mainly it used to be West Asia. Then we also started getting more oil from Venezuela and even the US. LNG supplies came from different countries other than Oman and UAE. So in short, we diversified our import sources. Along with that, we increased our domestic manufacturing of LPG so that the supply bottlenecks and shortages feared could be addressed. So in this way, we handled the crisis of oil.
1: यहाँ पर एक एक और सवाल कह लें कि हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारी जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं एक और तो उसका असर पड़ता है लेकिन हम जो तेल के प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं उससे किस रूप में अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है या क्या परिणाम निकल के आता है?
0: ये फॉरेन ट्रेड में जरूर परिणाम मिलता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं उससे हमारा विदेशी मुद्रा की आय होती है और दूसरी बात ये है कि जो हम तेल जो हमारे देश में भी जो खनन करते हैं जो बनाते हैं उसको वो उसको हम इंटरनेशनल प्राइस में हम उसको बाहर बेच सकते हैं तो एक तरफ फॉरेन ट्रेड में हमारी एक्सपोर्ट्स में इसकी सुविधा आती है और दूसरी तरफ हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो डोमेस्टिक हम से बना के हम जो डोमेस्टिक जो डिमांड जो है उसको भी हम मीट कर सकते हैं
2: Very well, and with

0: That, let's take a look at the next story. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases.
1: यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सरकार का जो ये कदम है इसके क्या आयाम निकलेंगे और किस रूप में फर्जीवारे को रोकने में या जो म्यूल अकाउंट है उनकी रोकथाम में सहायता मिलेगी.
2: देखिए ये जो कदम जो है ये जो हमारे देश की जो सबसे ऊंची जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उनके ऑर्डर से आया है. उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एक एक डायरेक्टिव दिया है जिससे कि जो म्यूल अकाउंट्स जो हैं जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे जनधन के बाद बहुत लोगों के पास बहुत सारे अकाउंट आ गए उन अकाउंट में लोग पैसे कम हैं आपके पैसे भी नहीं हो तभी वो अकाउंट हैं तो उन अकाउंट की जो दुरुपयोगिता बढ़ जाती है
1: जी,
2: बहुत
1: जी,
2: लोग उन म्यूल अकाउंट्स को जो उनके अंदर कोई पैसे नहीं है पर उसका एक अकाउंट होल्डर है और वो अकाउंट है उसका दुरुपयोग करते हैं और जो फर्जी काम आपके किसी से चोरी करना या आप जो ड्रग्स की जो पैसे होते हैं टेररिज्म के पैसे होते हैं वो आपके जो अकाउंट होल्डर हैं उनको वो जानते भी शायद नहीं होंगे पर उनके अकाउंट से का इस्तेमाल करके वो बैंकिंग सिस्टम से उसका फाइनेंसिंग होता है
1: जी, जी,
2: तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से कड़ी शब्दों में ये कहा है कि उसको एक नया सिस्टम ऐसा चालू करना है जिससे कि जो ये म्यूल अकाउंट सिस्टम जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक रोकथाम हो सके और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बनाने का एक डायरेक्टिव दिया गया है
1: जी.
0: And our next story links to the mention of RBI's monetary policy meeting, which begins tomorrow. The meeting of Reserve Bank's Monetary Policy Committee began yesterday. My apologies. RBI Governor Sanjay Malhotra is slated to announce the policy statement tomorrow. We have a report on the same.
3: In the last Monetary Policy Committee meeting, the Reserve Bank of India kept the key repo rate unchanged at 5.25% for the third time in a row. At the same time, RBI revised its GDP growth forecast for the current financial year downward by 30 basis points BPS to 6.6% and raised its CPI inflation projection by 50 BPS to 5.1%, highlighting growing concerns over inflation risk. RBI's primary mandate is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. In the current context, India's retail inflation rose to 4.38% year-on-year in June, slightly above RBI's target of 4%, but still within its mandated tolerance band of 2% to 6%. With geopolitical tensions persisting and crude oil prices remaining volatile, the RBI's policy decision will be closely watched. Ayushi Singh for Market Mantra.
1: क्या आसार हैं कल की घोषणा में? क्या बाजार की अपेक्षाएं और
2: अपेक्षाएं हैं ये हैं कि जो रेट जो है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं जिस रेट से बैंकों को जो कॉस्ट ऑफ मनी होती है उसमें कोई परिवर्तन शायद ना हो पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट जो देखेगी और या समझने की कोशिश करेगी कि आरबीआई की स्टेटमेंट के अंदर इकोनॉमी की जो ग्रोथ की जो आउटलुक जो है या इन्फ्लेशन की जो फोरकास्टिंग है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं. जैसे आयुषी सिंह जी ने कहा कि पहले अभी तक जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट जो है वो अभी भी टॉलरेंस बैंड के अंदर है
1: जी, जी.
2: क्या इस वक्त इस कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का आउटलुक में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे कि वो बैंड के ऊपर जाए और ग्रोथ का जो असेसमेंट है रेट के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कोई अपेक्षाएं नहीं है पर आरबीआई की असेसमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में कैसी होगी उसके ऊपर बहुत उनकी हमारी सबकी आंखें
1: लगी
2: रहेगी.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर जहाँ दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ. जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई है.
0: एंड लेट्स टेक अ लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर. इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वॉज

0: trading 0.8% up at 1,44,170 rupees per 10 grams, while silver was also trading 2.1% higher at 2,21,740 rupees per kilogram a short while ago.
1: आइए श्रोताओं आपको हम लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के मूल्यों में आज समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 1% बढ़त के साथ 1,42,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर समाचार तैयार किए जाने तक कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध यानी सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 2% बढ़त के साथ 2,21,448 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एके भट्टाचार्य जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मिस्टर भट्टाचार्य। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Benchmark domestic indices snap 4-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline. And Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow. With that, it's a wrap on today's Market Mantra. We'll see you in the next one. Take care.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। पहले जो गीत आपके लिए लेकर आई हूं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर

मन्ना डे की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम है चोरी चोरी। इसके बाद आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से गीत, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज है, संगीत होगा रवि का। और साथ ही वक्त भी मिला लें, 11:41 और 20 सेकंड हो चुके हैं। यह है गीत मेरे मनमीत, संग है आपके अर्पणा।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

शैलेंद्र का लिखा गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत पद ये गीत अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अगला गीत जो है उसे संगीत पद किया है सलिल चौधरी ने गीत लिखा है राजेंद्र किशन ने और आवाज होगी लता मंगेशकर तलत महमूद की फिल्म का नाम है छाया इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार अर्पणा को दे इजाजत यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा नमस्कार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि

0: उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अमरीका का अंतिम लक्ष्य है, जबकि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना तत्काल प्राथमिकता है। इस बीच कतर ने पुष्टि की है कि अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच संभावित समझौते के मसौदे पर बातचीत चल रही है ताकि क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The apex court yesterday also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Aulia that sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It added that the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. Union Minister of State for Health and Family Welfare Pratap Rao Jadhav has informed that the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has significantly contributed in reducing out-of-pocket expenditure. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, the minister said that till June this year, a total of 12.69 crore hospital admissions worth 1.92 lakh crore rupees have been authorized under the scheme through a network of over 37,000 public and private hospitals. The two-day meeting of heads of national statistical offices of BRICS member countries concluded yesterday in Lucknow with the formal adoption of a joint statement. This statement marks a significant milestone in strengthening statistical frameworks across BRICS countries, laying the groundwork for more robust, transparent and policy-relevant official statistics. On the second day, the Union Ministry of Statistics and Programme Implementation and BPS Statistics Indonesia signed a letter of intent during a bilateral meeting to strengthen cooperation in official statistics, capacity building and strategic collaboration. The event brought together over 350 participants, including representatives from national statistical offices of BRICS, policymakers, academia, think tanks, civil society organizations, and technical experts. The Commission for Air Quality Management, CAQM, has issued an amendment to further strengthen enforcement against violations of dust mitigation measures at construction and demolition sites with plot area less than 500 square meters across Delhi and the National Capital Region. The expanded enforcement framework covers areas including Manesar, Karnal, Panipat, Rohtak, Meerut, Alwar, Bharatpur, Bhiwadi and Neem Rana. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has welcomed Kamar pilgrims in Haridwar by showering flower petals and performing Charan Prakshalan during the Kamar Yatra. Flower petals were also showered from a helicopter along the route from Harki Pairi to the Kamar Yatra corridor. The Chief Minister inaugurated the Chief Minister's Health Service Camp, inspected the medical facilities available there and served food to the devotees. In Keralam, red alert for very heavy rainfall is in force in 8 of the state's 14 districts. Orange alert has been issued for 4 districts, while the remaining 2 districts are under yellow alert. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, has felicitated Indian athletes who returned from the Commonwealth Games 2026 after delivering historic performances in boxing, judo and para-athletics. During the felicitation ceremony held in New Delhi yesterday, the medal winners were presented cash awards of 35 lakh rupees for gold, 20 lakh rupees for silver and 10 lakh rupees for bronze. And that's the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz. प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि. जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसमें हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई कहानी जरूर आती है. कभी मुस्कुराहटों से भरी हुई, तो कभी इंतजार से सजी हुई, तो कभी किसी की याद में चुपचाप सिमटी हुई. जी हाँ, मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है. कभी अल्फाज में बयां हो जाती है, तो कभी खामोशियों में कुछ कह जाती है. और यही छोटे छोटे एहसास हमारी ज़िंदगी को खास बना देते हैं. और इन्हीं एहसासों को, अनकही बातों को, दिल छू लेने वाले लम्हों को जब सुरों में और गीतों में पिरोया जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ और हम सजा लाते हैं गीतों के माध्यम से, तो चलिए आगाज करते हैं बॉबी फिल्म के इस गीत के साथ जिसे आवाज़ दी है शैलेंद्र सिंह ने.

कभी कभी प्यार को आवाज की जरूरत नहीं होती। कई रिश्ते बिना पुकारे भी दिल तक पहुंच ही जाते हैं। शिकायतें होती हैं, हल्की सी नाराजगी भी होती है, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो एक खामोशी के बाद भी हजार अल्फाज खामोशी में ही बयां हो जाते हैं। और इन्हीं मीठे एहसास और प्यार भरी नोकझोंक को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करता हुआ अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं कि कुछ

कभी कभी जिंदगी में यूं भी होता है कि चलते चलते राहें अचानक अलग हो जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार दूरियों से कभी नहीं मिटता। कुछ रिश्ते बिछड़कर भी दिल में वैसे ही बसते हैं जैसे पहली मुलाकात की कोई मीठी याद। जुदाई का दर्द, याद की कसक और मोहब्बत की गहराई को बेहद खूबसूरती से एक दिल ही समझ सकता है।

0: रिश्तों में कभी प्यार होता है तो कभी रूठना मनाना भी। कई बार नाराजगी बस जबान तक रहती है, लेकिन दिल चाहता है कोई रोक ले, कोई मना ले। मोहब्बत की यही मीठी अदा रिश्तों को और भी ज्यादा खास बना देती है।
1: तो हम चलते हैं।

इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। 1:10 पर गीत सुहाने में होगी हमारी और आपकी एक बार फिर से मुलाकात। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. The court also asked the centre to launch pilot projects on selected national highway corridors to replace conventional toll plazas with automatic vehicle detection systems to reduce congestion and improve traffic flow. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Fazlnoor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, that is SIR, of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification by booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on the 27th of October. Andhra Pradesh Chief Electoral Officer Vivek Yadav held an all-party meeting yesterday at the State Secretariat in Amravati. He distributed soft copies of the draft electoral rolls for all 175 assembly constituencies published on the 31st of last month. The draft roll, prepared with July 1st as the qualifying date, lists over 3.72 crore electors, including service voters. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018 to strengthen action against fugitives. It added that India has developed an integrated, intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights. Union Minister of State for Rural Development Dr. Pema Sani Chandrasekhar has reviewed the progress of Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushal Yojana 2.0 and key digital reforms in New Delhi. During the meeting yesterday, it was emphasized that all possible measures needed to be taken for timely completion of training and placement as per the targets allocated under the Yojana. In badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garg and Prithvi Krishnamurthy Roy upset 6 seeds Chloe Mbon, Croy Kittamon and Vorapol Thong Sanga of Thailand to advance to the men's double second round at the Korea Masters tournament in Asan yesterday. The Indian pair won the match 21-16, 21-18, and that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। मेरे घर से रात की सेज तक, मेरे घर से रात

की सेज तक वो एक आंसू की लकीर है, जरा बढ़ के चांद से पूछना वो इसी तरफ से गया ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो। वो फरिश्ते आप ही ढूंढिए कहानियों की किताब में, जो बुरा कहें ना बुरा सुने, कोई शख्स उनसे खफा ना हो। कहीं और ये हादसा ना हो, कहीं रास्ते में कोई जुदा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 1:22 और हो गए हैं पूरे 34 सेकंड। बात खूब लिखा है किसी ने कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी

न मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला। खुदा से इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। वो चेहरा चांद है, आंखें सितारे, जमी फूलों की जन्नत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ कि मुद्दत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दो दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. An Air India flight AI2379 operating from Phuket to Delhi yesterday experienced brief in-flight turbulence, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all 137 passengers and 8 crew members disembarked safely. 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to the hospital for medical evaluation. Air India confirmed that there have been no serious injuries as of now. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has stated that ethanol is a big opportunity for the farming sector, provided its policy is farmer-centric and the correct price of the crop reaches the farmer directly. During a meeting with the delegation of the All India Kisan Coordination Committee held in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan listened to all the suggestions from farmer leaders and assured them that the government will seriously consider their views on ethanol. He added that ethanol will strengthen both the country's energy security and farmers' economic well-being. In Sri Lanka, heavy rains have triggered floods and mudslides in tea-growing mountainous regions, leaving at least 7 people dead and forcing the closure of some schools. Over the past 2 days, heavy downpours have flooded homes, fields and roads across many parts of the country, with the central mountainous areas being the worst hit, according to the government's Disaster Management Centre. Its spokesperson Pradeep Kodipilli reported that at least 5 people died after being buried in mudslides that overran 2 houses in that central region, while 2 others died in floods. 3 additional people have been injured. He added that 291 houses have been damaged and nearly 3,500 people have been evacuated. India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya for today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar and parts of Northeast India during the next 2 days. Similar weather conditions are expected over Kerala, Mahe, Rajasthan, Tamil Nadu, Puducherry and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Karaikal, Karnataka, Jharkhand, Odisha and Andaman and Nicobar Islands for today. In badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garg and Prithvi Krishnamurthy Roy upset 6th seed Kloempon Kroikitamon and Warapol Thongsak Enga of Thailand to advance to the men's double second round. And that is the end of this news bulletin.

रात सुरमई लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तो चलिए आपको सुनवाने जा रहे हैं सबसे पहला गीत, फिल्म है मुद्दत और आवाज़ मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की है।

कभी कभी ये दिल बिना किसी आहट के मचलने लगता है. किसी की एक मुस्कान, एक नजर या एक छोटी सी मुलाकात अचानक उसका हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द समटने लगता है. शायद ये वही पल होता है जब एहसास होता है कि ये दिल किसी की मोहब्बत में अब गिरफ्तार हो गया है और डूबने लगा है.

0: और चलिए रात सुरमई में आपको डॉन फिल्म का एक गीत सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या खूब कहा किसी ने कि सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में, सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। रात तेरी याद ने दिल को इस तरह छेड़ा जैसे कोई चुटकी ले नर्म नर्म गालों में। मेरी आंख के तारे अब ना देख पाओगे, रात के मुसाफिर थे खो गए उजालों में। बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।

सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो, दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। महसूस किया तुमको तो गीली हुई पलकें, भीगे हुए मौसम की अदा तुम तो नहीं हो। इन अजनबी राहों में नहीं कोई भी मेरा, किसने मुझे यूं अपना कहा तुम तो नहीं हो।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक. आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. अब सुरभि को दीजिए इजाजत और आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। इनमें रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, कॉपीराइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी तथा संस्कृति, जलवायु और सतत विकास शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता आज से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुडा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays in and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026. With this, the lower house was also adjourned for the day. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. The 13th BRICS Education Ministers meeting and 3rd BRICS Senior Officials meeting will be held from today till Friday in Bhubaneswar, Odisha. The Education Ministry stated that the meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. Union Education Minister Prahlad Joshi will participate in the 13th BRICS Education Ministers meeting. Meanwhile, India will host the 3rd BRICS Culture Working Group meeting in Bhopal today. The Ministry of Culture stated that the two-day meeting will gather representatives from the BRICS member country states to promote cultural cooperation and build consensus on key areas before the BRICS Culture Ministers meeting. Meta's global team executives will meet with government officials today and tomorrow to discuss content moderation practices, the handling of child sexual abuse material, that is CSAM, and wrongful actions against prominent accounts. Speaking to the media in New Delhi, Ministry of Electronics and Information Technology Secretary S. Krishnan stated that the government seeks to ensure compliance and understand the extent to which synthetically generated content is monitored by the company. Mr. Krishnan noted that the government wants Meta to explain why certain systems or processes have not functioned as intended and to outline the challenges. Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiyor Saidov met with Ambassador Sergio Gor, Special Representative of the U.S. President for South and Central Asia in New Delhi. Yesterday, they held an in-depth exchange of views on further enhancing high-level dialogue and on priority areas of bilateral cooperation. Earlier, Uzbek Foreign Minister also met with Lok Sabha Speaker Om Birla to discuss ways to deepen inter-parliamentary dialogue, enhance the activities of friendship groups and promote the exchange of experience in the field of lawmaking between India and Uzbekistan. In Kerala, red alert for very heavy rainfall is in force in 8 of the state's 14 districts. Orange alert has been issued for 4 districts, while the remaining 2 districts are under yellow alert. A total of 18,434 people are staying in 418 relief camps across the state. The heavy rainfall is likely to continue until the weekend. Meanwhile, India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya for today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar and parts of Northeast India during the next 2 days. A 36-member Indian track and field team will compete at the World Athletics Under-20 Championships 2026 held at Hayward Field in Eugene, Oregon, USA, kicking off today. The team arrives in Oregon after its best-ever performance outside India at the Asian U-20 Athletics Championships in May, where it secured 19 medals, including 10 gold, and finished second behind China. Teenage high jumper Pooja Singh, the senior Asian high jump champion, will lead India's challenge. Other medal hopes include Asian under-20 champions Nitin Gupta and Shahnawaz Khan. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में कभी रात दिन हम दूर थे। रहते हैं उदास बिना किसी बात के, रहते हैं उदास बिना किसी बात के, उदासी का यह मंजर मेरी समझ में नहीं आया। उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, वरना किसी ने मुझे कहां सताया। 3:27 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड।

बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, सभी अरमान पूरे यहाँ कौन ही कर पाता है। हो गए जो पूरे सारे अरमान, हो गए जो पूरे सारे अरमान, तो फिर जिंदगी जीने का मजा कहाँ आता है। 3:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कुछ ऊपर कुछ नीचे भी चलती है ये जिंदगी है, कभी एक सी नहीं चलती है। उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं इस जिंदगी में, आराम आराम से ही सही, बस ये जिंदगी के साथ चलते रहो, तब जाकर ये जिंदगी संवरती है।

चाहते हो खुद के लिए सम्मान, चाहते हो खुद के लिए सम्मान, तो कुछ सम्मान दूसरों का भी करना सीख लो। अकड़े रहते हो हर जगह, अकड़े रहते हो हर जगह, कभी कभी कहीं झुकना भी सीख लो। 3:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Aulia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. Meta's global team executives will meet the government officials today and tomorrow to discuss content moderation practices, the handling of child sexual abuse material, that is CSAM, and wrongful actions against prominent accounts. Speaking to the media in New Delhi, Ministry of Electronics and Information Technology Secretary S. Krishnan stated that the government seeks to ensure compliance and understand the extent to which synthetically generated content is monitored by the company. Mr. Krishnan noted that the government wants Meta to explain why certain systems or processes have not functioned as intended and to outline the challenges. The 13th BRICS Education Ministers Meeting and 3rd BRICS Senior Officials Meeting will be held from today till Friday in Bhubaneswar, Odisha. Union Education Minister Prahlad Joshi will participate in the 13th BRICS Education Ministers Meeting. Meanwhile, India will host the 3rd BRICS Culture Working Group meeting in Bhopal today. The Ministry of Culture stated that the two-day meeting will gather representatives from the BRICS member states to promote cultural cooperation and build consensus on key areas before the BRICS Culture Ministers meeting. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has stated that ethanol is a big opportunity for the farming sector, provided its policy is farmer-centric and the correct price of the crop reaches the farmer directly. During a meeting with a delegation of the All India Kisan Coordination Committee held in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan listened to all the suggestions from farmer leaders and assured them that the government will seriously consider their views on ethanol. He added that ethanol will strengthen both the country's energy security and farmers' economic well-being. A United States official has stated that any temporary shipping routes through the Strait of Hormuz will not require permits, approvals or fees, asserting that no single party controls navigation through the strategic waterway. The official said, any temporary routes through the Strait of Hormuz will be unobstructed, without permits, approvals or fees. The official added that no party has control over the shipping lanes or the ability of vessels to transit through the strait. The remarks come amid renewed tensions over the waterway after senior Iranian official Mohsen Rezai rejected US President Donald Trump's comments on reopening the Strait of Hormuz. Rezai said Iran will not permit any shipping route through the strategic waterway other than the one designated by Tehran. A 36-member Indian track and field team will compete at the World Athletics Under-20 Championships 2026 held at Hayward Field in Eugene, Oregon, USA, kicking off today. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 4:10 हो चुके हैं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा

0: कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। आइए शुरू करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत।
1: हर चेहरा यहाँ चांद

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को।

उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर पर नीचे अपनी जमीन का भी ख्याल रखना आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन पर तुमको नीचे आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन पर तुमको नीचे सारी जिंदगी कोई हवा में नहीं रहता 4:25 हो चुके हैं आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ

मोहम्मद रफी जी की आवाज में ना जा कहीं अब ना जा। रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज दिन कुछ नया होगा। 4:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या, तुझे देखा।

हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें पर हम रोना उसी का रोते हैं जो मिला नहीं और निकल कर देखा जब घर से बाहर और निकल कर देखा जब घर से बाहर तब पता चला जो हमें मिला है वो बहुतों को आज तक मिला ही नहीं। 4:39 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही सारी पूरी हो जाएं ये जरूरी तो नहीं सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं

4:56 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास और सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान सहयोग, नवाचार और स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक में भाग लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। अपनी तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग की दोहराई। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गारागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजिन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

10 मिनट हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। करते रहिए कोशिशें हजारों, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। लगातार प्रयास करते रहने से एक ना एक दिन जरूर है हासिल होता। पर हासिल हो जाए कुछ तो उस पर घमंड मत करिए, पर हासिल हो कुछ तो उस पर घमंड मत करिए, क्योंकि ये वो घमंड ही है जो हमसे सब कुछ है वापस ले लेता। 5:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और फिर से मैं ही हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।

कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं पर जानकर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है। 5:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर ही रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 5:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।